0: आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुक्त सौ कहावे
1: तैसा है तैसा उसोग सदानंद नहीं वियोग
0: तैसा स्वर्ण तैसी माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी
1: तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान
0: जो परताए साई जुगत नानक को पुरख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर रखे तैसा तिनाओ
0: आपे करण करावन जोग प्रपावे सोई फन होग
1: पसरे आप होए अर्थ तरंग लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग
0: जैसी मध्य तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता।

0: छोटाचार बिहारी,
1: कई कोट
0: कोई वेद
1: पाती सुबासी,
0: सुबासी,
1: कई
0: कई
1: कोट
0: कोट पर
1: बान
0: में
1: पावे
0: उदासी,
1: वासी,
0: कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते,
1: कई
0: कई
1: कोट
0: कोट आत्म
1: आत्म
0: त्यांतार
1: त्यांतारे,
0: है, कई
1: कई
0: कोट
1: कोट कब
0: कब का
1: का
0: विचार है,
1: विचारे,
0: कई कोट नवतन नाम ते आवे, नानक करते का अंत न
1: कई
0: पावे, कई
1: कोट
0: कोट
1: पाए
0: पे अभिमानी,
1: अभिमानी,
0: कई
1: कई कोट
0: कोट अंध
1: अंध
0: ज्ञानी, कई
1: ज्ञानी,
0: कोट कृपण कठोर, कई कोट अपिक आत्म निकोर,
1: कई
0: कई
1: कोट
0: कोट
1: पर
0: पर
1: दर्ब
0: दर्ब
1: को
0: घूमे,
1: हिरा,
0: कई
1: कई
0: कोट
1: कोट पर
0: पर
1: दुख
0: दुख
1: ना
0: ना करे, कई
1: करे।
0: कोट माया श्रमा है, कई कोट पर देश प्रमा
1: जे
0: है,
1: जित
0: जित
1: लावो
0: लावो
1: ते
0: तित
1: तित
0: लगना,
1: लगना,
0: नानक
1: नानक
0: करते
1: करते
0: की
1: की
0: जाने
1: जाने
0: करता
1: करता
0: रचना, कई
1: रचना।
0: कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी,
1: कई
0: कई कोट
1: कोट पंखी
0: पंखी सर
1: सर्प
0: पो पाए,
1: पाए, कई
0: कई
1: कोट
0: कोट
1: पाथर
0: पाथर
1: बिरख
0: बिरख
1: निप
0: निप
1: जाए,
0: जाए, कई कोट पवन पाणी बैसंतर, कई कोट तेज भूमंडल,
1: कई
0: कई
1: कोट
0: कोट
1: शशियर
0: शशियर
1: सूर
0: सूर
1: नक्षत्र,
0: नखत्तर, कई
1: कई कोट
0: कोट
1: देव
0: देव
1: दानव
0: दानव
1: इंद्र
0: इंद्र
1: सिर
0: शेर शतर,
1: सतर।
0: सगल समग्री अपने सूत तार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार
1: कई
0: है, कई
1: कोट
0: कोट
1: राजस
0: राजस तामस
1: तामस सातक,
0: साधक,
1: कई
0: कई
1: कोट
0: कोट
1: वेद
0: वेद
1: प्राण
0: प्राण
1: सिमत
0: सिमत
1: अर
0: अर्थास्त्र,
1: शास्त्र,
0: कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत,
1: कई
0: कई
1: कोट
0: कोट
1: किए
0: किए
1: चिर
0: चिर जीवे,
1: जीवे, कई
0: कई
1: कोट
0: कोट
1: गिरी
0: गिरी
1: मेर
0: मेर
1: सुबारन
0: सुबरन तीरे,
1: तीरे।
0: कई कोट जख किन्नर पिशाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच,
1: सत्य
0: सत्य नेरे
1: नेरे
0: सबूते
1: सबूते दूर,
0: दूर,
1: नानक
0: नानक
1: आप
0: आप
1: अलपत
0: अलपत्रया
1: रहे
0: परपूर,
1: परपूर।
0: कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी,
1: कई
0: कई कोट
1: कोट
0: जन्मे
1: जन्मे
0: जीवे
1: जीवे मरे,
0: मरे,
1: कई
0: कई
1: कोट
0: कोट
1: बहु
0: बहु जोनी
1: जोनी फिरे,
0: फिरे, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काले थक पाहे,
1: कई
0: कई
1: कोट
0: कोट
1: किए
0: किए तनवंत,
1: तनवंत,
0: कई
1: कई कोट
0: कोट
1: माया
0: माया
1: मह
0: में जिंत, जय जय
1: चिंत,
0: पाणा तह तह राखे, नानक सब किश प्रभ कह हाथे,
1: कई
0: कई
1: कोट
0: कोट पै
1: पै बैरागी,
0: बैरागी,
1: राम
0: राम
1: नाम
0: नाम
1: संग
0: संग
1: तिन
0: तिन
1: लिब
0: लिब लागी,
1: लागी,
0: कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते,
1: कई
0: कई कोट
1: कोट
0: दर्शन
1: दर्शन
0: प्रभ
1: प्रभ
0: प्यास,
1: प्यास,
0: तिनको
1: जिनको
0: मिल्यो
1: मिल्यो
0: प्रभ
1: प्रभ
0: अविनाश,
1: अविनाश,
0: कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग,
1: जिनको
0: जिनको
1: होए
0: होए
1: आप
0: आप
1: सो
0: सो प्रसन्न,
1: प्रसन्न,
0: नानक
1: नानक ते
0: ते
1: जन
0: जन
1: सदा
0: सदा तन
1: धन
0: धन,
1: धन,
0: कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड,
1: कई
0: कई
1: कोट
0: कोट
1: होए
0: होए अवतार,
1: अवतार, कई
0: कई
1: जुगत
0: जुगत
1: कीनो
0: कीनो विस्तार,
1: विस्तार,
0: कई बार पसरयो पासार, सदा सदा एक एक अहंकार,
1: कई
0: कई कोट
1: कोट कीने
0: कीने
1: बहु पात,
0: बहुपात,
1: प्रभ
0: प्रभते
1: ते होए
0: हुए ब्रह्मय
1: ब्रह्मय समात,
0: समात, का अंत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ
1: कई
0: सोए,
1: कोट
0: कोट पार
1: पार
0: ब्रह्म
1: ब्रह्म के
0: के
1: दास,
0: दास,
1: तिन
0: तिन
1: होवत
0: होवत
1: आत्म
0: आत्म
1: प्रगास,
0: प्रगास, कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे,
1: कई
0: कई कोट
1: कोट
0: नाम
1: नाम
0: रस
1: रस पीवे,
0: पीवे,
1: अमर
0: अमर
1: पै
0: पै
1: सर
0: सर
1: सद
0: सद
1: ही
0: ही
1: जीवे,
0: जीवे, कई
1: कई
0: कोट नाम गुण गावे, आत्म रस सुख सहज समा

0: तनमंता होए कर करवावे, त्रिन समांतर संग न जावे।
1: लश्कर मानव कुपर करे आस, पाल पीतर ताका होए बिनास।
0: सबसे आप जाने बलवंत, किन में होए जाए पसमंत।

0: नाना बिदकर बंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई।
1: सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवे नानक हर नाओ।
0: नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड।
1: नाम के तारे सिमरत वेद प्राण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान।
0: नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार।
1: नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन सरवन।
0: कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सूजन गत पाए।
1: रूप सत जाकर सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान।
0: करतूत सत सत जाकी वाणी, सत पुरख सब माहे समाणी।
1: सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत।
0: सत करणी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब पली।
1: सत नाम ब्रह्म का सुखदाई, विश्वास सत नाम गुरते पाई।
0: सत बचन साधु उपदेश, सत जन जाके हृदय प्रवेश।
1: सत नेत बुझे जे कोए, नाम जप ताकि गत होए।
0: आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत।
1: जिसकी सिर सो करने हार, अब न बूझ करत विचार।
0: करते की मित न जाने किया, नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया।
1: बिस्मन बिस्म पै बिस्माद, जिन बुझिया तिसाया स्वाद।
0: प्रभ के रंग राज चन रहे, गुर के बचन पदार्थ लहे।
1: कोई जाते दुख काटन हार, जाते संग तरह संसार।
0: जन का सेवक सो वड पागी, जन के संग एक

0: गौ
1: सतगुर सिखे करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल
2: सिखी गुरदुर मत मन हरे गुर
0: बचनी हर नाम उचरे
1: सतगुर सिखे बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हटे
0: सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख बड़ भागी है
1: सतगुर सिख हलत पलत सवारे नानक सतगुर सिख को जिए नाल समारे
0: गुर के ग्रह सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन में सहे
1: आपस कौ कर पछना जना हर हर नाम हृदय सत्यावे
0: मन बेचा सतगुर का पास तिस सेवक के कार्य वास
1: सेवा करत होए नह कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी
0: अपनी कृपा जिस आप करे नानक हो सेवक गुर की मत ले
1: बिस बिस वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
0: सो सतगुर जिधे हर नाम अनक बार गुर को बल जाओ
1: सर्व निधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता
0: ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कछ भरम
1: सहस्यान पलया न जाइए नानक ऐसा गुरबट भागी पाइए
0: सफल दर्शन पेखत पनीत पार्षद चरण गत निर्मल रीत
1: संग राम।

0: हर एक।
1: अंधकार
0: दीपक
1: दीपक
0: परगासे,
1: नानक
0: नानक परम
1: दुख
0: तहते
1: तहते नासे।
0: तप्त महे ठांड वरताए, अनंत पिया दुख नाठे पाई।
1: जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे।
0: भाव छूका निर्भव होय बसे, सगल व्याध मन ते खैन से।
1: जिसका साचन कृपा तारी, सात संग जप नाम
0: मुरारी। हित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवण।
1: निर्गुण आप सरगुण पियोही, कला तार जिन सगली मोही।
0: अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए।
1: हर बिन दूजा नाही कोए, सब निरंतर एको सोए।
0: पोत पोत रव्या रूप रंग, भय प्रगास साध कै संग।

0: दिया तो क्यों बिसरे जे जीवन दिया।
1: सो को बिसरे जे अगन में राखे, गुर प्रसाद को बिल्ला लाखे। गुर पूरे तथे बजाया, प्रभ अपना नानक जानते आया। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरे नाम जपाओ।

0: जब आकार एक कुछ न दिसते ताप पन तब कहते होता
1: जब तारी आपन सुन समाद तब बैग्रोह के सांग कमात
0: जब इसका बन चहन न जापत तब हर्क शोक किसे व्यापत
1: जब आपन आप आकार ब्रह्म तब वो कहाँ के शोक परम
0: आपन खेल आप बढ़ती जा नानक करने हर न दूजा
1: जब होवत प्रभ केवल तनी
2: तब बंद मोक्ष का के शोक बनी
0: जब एके हर अगम अपार तब नरक स्वर्ग कौन अवतार जय आपे आप अपनी जो तरे तब कवन निडर कवन कत दरे अविनाशी सुख आपन आसन तय जनम मरण को कहा विनाशन
2: जब पूर्ण कर्ता प्रभ सोए तब जानकी त्रास कहो किस होए
0: जब अवगत अगोचर पाप एका तब चितर गुप्त किस पूछत लेखा
2: जब नाथन निरंजन अगोचर गाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे
0: आपन आप आप ही चर्जा नानक आपन रूप आप ही परजा
2: जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता
0: जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन मान कौन अभिमान
2: जय स्वरूप केवल जगदीश जय साल सिदर लगत कौ कीस
0: जय ज्योत स्वरूपी जो संग समावे तय किसे पुभु कवन तृप्तावे
2: रावण करने हार नानक करते का नाही सुमार
0: जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई
2: जय सर्व कला आप परवीन तह वेद कतेव कहा को चीन
0: जय आपन आप आप उतारे तो सगन अब सगन कहा बिचारे
2: जय अपन ऊंच आपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा
0: बिस्मन बिसम रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप
2: जय अशल अशेज भेद समाया ऊहा किसे व्यापत माया
0: आपस को आपे आदेश तै गुण का नाही परवेश
2: जय एक एक एक भगवंता तै कौन अचिंत किस लागे चिंता
0: जय आपन आप आप पत्यारा तै कौन कथे कौन सुनने हारा
2: बहु बेअंत ऊचते ऊचा नानक आपस को आपे पहुंचा
0: जय आप रचियो पर पंच आकार तै गुण में कीनो विस्तार
2: पाप पुण्य तै पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंसावत
0: हाल जाल माया जंजाल होमे मोह परम पै पार
2: दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की ओ बखान
0: आपन खेल आप कर देखे खेल संकोचे तो नानक एके
2: जय अवगत भगत है आप जय पसरा पसार संत प्रताप
0: दहु पाका आपे तनी उनकी शोभा अनहो बनी
2: आपे कौतुक करे आंध जो जो आपे रस भोगन जोक
0: जिस पावे तिस आपन नाई लावे जिस पावे तिस खेल

0: कथे आप सुनने हार, आपे एक आप विस्तार।
1: जातस पावे ता सिष्ट पाए,
2: अपने पाणी ले समाए।
0: तुमते पेन नहीं कुछ होए, आपन सूर सब जगत परोए।
1: जाको प्रभु जी आप बुझाए,
2: सतनाम सुई जन पाए।
0: सोसमदर्शी तत का बेता, नानक सगर सिष्ट का जेता।
1: जी जंतर सब ताके हाथ, दीन दयाल नाथ को नाथ।
0: जिस राखे तिस कोई न मारे, सो बुआ जिस मनो भी सारे।
2: तिस कबर कहाँ को जाए,
1: सबसे एक निरंजन राय।
0: जगत जाके सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ।
1: गुण दान बेअंत पार, नानक दास सदा बलिहार।
0: पूरन पूर है दयाला, सब ऊपर होवत कृपाल।
1: अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जामी रहे हो व्याप।
0: व्रत पाले जीन बहु पात, जो जो रचियो सो तिसे त्यात।
1: जिस पावे तिस लय मिलाए, भगत करे हर के गुण गाए।
0: अंतर विश्वास कर मान्या, करन हार नानक एक जान्या।
1: जन लागा हर एक नाए, तिसकी आस न बैठी जाए।
0: सेवा को सेवा बनी आए, हुकम बूझ परम पद पाई।
1: इसके ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसे निरंकार।
0: अंदर तोर पै नर बैर, अंदर पूजे गुर के पैर।
1: हे लोक सुखिए पर लोक सहेले, नानक हर प्रभु आपके मेले।
0: संग मेरे करो आनंद, गुण गावो पर परमानंद।
1: राम नाम तत करो विचार, दुर्लभ देखा करो उदार।
0: अमृत भजन हर के गुण गाओ, प्राण तान का एह सुहाओ।
1: हर पहर पर देखो नीरा, मिटे ज्ञान बिनसै अंधेरा।
0: हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो।
1: हंस पत दोए लिहो सुवार, राम नाम अंतर उतार।
0: पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसे ती साच परिखिया।
1: मन तन नाम जपो लिव लाए, दुख दर्द मन ते पहु जाए।
0: सच बापार करो बापारी, दरगह निभे केप तुम्हारी।
1: एका टेक रखो मन माहे, नानक बहर न आवे जाए।
0: कहा को जाए, उबरे राखन हार त्याए।
1: निरपौ जपे सगर पौ मिटे, प्रभु कृपा से प्राणी छुटे।
0: जिस प्रभु राखे तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख।
1: चिंता जाए मिटे अहंकार, तिस जन को कोई न पहुचन हार।
0: पर ठंडा गुर सूरा, नानक ताके कार्य पूरा।
1: मत पूरी अमत जाकी दृष्ट, हाथों के उदर श्रेष्ठ।
0: जाके अनूप, सबल दर्शन सुंदर हर रूप।
2: तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रदान।
0: मन बसे सो होत निहाल, ताकै निकट न

0: जी का
1: अच्छा
0: खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन धन गरीब निवार सतगुरु, दसां पातशाहियां दा हिरदा स्वरूप। बाणी के बोहित कलजुगी जीवां दे तारन हारे, गुरता दे तख्त ते सवाए मान। बख्शनहार बख्शिंद सतगुरु आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी अपार रहमत होई। बड़भागी सतसंगियां ने शामां दे दीवान दी हाजरी भरदिया होया संगती रूप अंदर मिल करके सुखमनी साहिब जी दी बाणी दे पाठ, सोदर रह रह साहिब जी के जाप उपरंत आरती आरते होर गुरबाणी दे शब्दां दे कीर्तन सरवण करके वाहिगुरु वल्लों बख्शे होए सवास अते समें नूं सफल कीता है। गुरु घर दी चल रही रोज दी मर्यादा अनुसार चल रही गुरु इतिहास दी लड़ीवार कथा दा समां सतगुरु महाराज जी ने तरस करके बख्शिश कीता है। छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे दस्तारबंदी दी रस्म अदा होई। बाबा बुढ़ा साहिब जी ने छेवें पातशाह महाराज जी नूं बड़ी सुंदर दस्तार जिस दे पल्ले जरीदार ने भेट कीती, गुरु पातशाह महाराज जी ने अपने सीस ते सजाई। फिर बाबा मोहरी जी तीसरे पातशाह महाराज जी दे साहिबजादे और गुरु अंगद साहिब जी दे साहिबजादे बाबा दातू जी, नगरां पिंडां दे सरपंच पंच आदिक नगर वासी सिख संगतां सब सुंदर दस्तारां लै करके आईयां। जो मसंद सेली टोपी माला जो पहले पातशाहां तो चलदी सी सेली उन दी बनी हुई माला, जिनू फकीर अपनी दस्तार दे उत्ते जां गले च पहनदे सन। गुरदेव पातशाह जी ने बचन कहे, बाबा बुढ़ा जी इस नूं पहनण दा हुण समां नहीं, इस नूं तोसे खाने दे अंदर सांभ देवो और इस वेले शस्त्र पहनण दा समां है। जो सतगुरु महाराज जी ने बचन कहे सन आप जी ने पुरबले प्रसंगां च सरवण कीते ने। पिता सतगुरु जी दा बदला लवांगे चंदू दे पासों, और जे असी बदला ना लईए ते असी भारी दोषी होवांगे, इह प्रतिज्ञा कीती सी। ये मसंदा ने एकत्र हो करके माता गंगा साहिब जी दे ताई जुड़ मिल करके इस तरह बेनतियां कीतियां, माता जी साडे कोले कोई सेना नहीं, घोड़े नहीं, शस्त्र नहीं, राज भाग दे सी मालक नहीं, दुश्मन दे कोलों एडा वड्डा प्रण करके बदला लै लेना कोई खेड नहीं है। साहिबजादा जी दी आरजू छोटी है और नौजवान अवस्था च उन्होंने ने इस तरह के बचन आ करके कह दिते ने। असी कुछ बोल नहीं सके, आप कृपा करके समझावो। तां माता गंगा साहिब जी कहन लगे कि उन्हां दे ताई किसी ने तां कोई बचन कहना नहीं बनता, वो सर्ब कला समर्थ ने, फिर भी असी जतन करके वेख लांगे जे हो सकिया तां। इस तरह की बेनती माता जी नूं करके मसंद नमस्कार करके वापस आए। आओ अगले अध्याय च जिवें गरीब नवाज बख्शिश करदे है गुरु इतिहास दी विचार एकाग्र हो के सरवण।

बने तार का मंडल जनक मोती। धूप मल आलो पवन चवरो करे सगल बंदराय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता सबदवा जंत पेरी राव। सहस तव नैन नन नैन है तोहे को सहस मूरत नन्ना एक तो ही। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध विचलत मोही। सब मह जोत जोत है सोहे तिस दय चानन सब मह चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस पावे सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो आंदनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देह नानक सारिं को हो जाते तेरे नाय वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा है। पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हाल मंडल मंडा है।

तिनांतर होमे कंडाहे ज्यों ज्यों चलहे जुपे दुख पावे जम काल सहे सिर डंडाहे। हर जन हर हर नाम समाणे दुख जना मरण पव खंडाहे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाहे।

अकत कथा तिन जानी, जाको आए सोई बिहाजो, हर गुरते मन है बसेरा, निज कर महल पावो सुख सहजे।

भगवती भगवंत भगत का रंग सकल दया का दोष का सांग मानती बिनसा सकल परम कर पूजा सकल पार ब्रह्म सा संग पापा मर खुआ दस भगवत की बात उत्तम हुआ भगवंत की टहल कर नित नियत मन तन हर पा बिशन प्रीत हर के चन हृदय बसव नानक भगवती भगवंत का पाव सो पंडित जो मन प्रभु द राम नाम आत्म सो द राम नाम सार रास पीवा उस पंडित का उदीस जाग जीव हर की कथा हृदय बसव सो पंडित फिर जो नाव वेद प्राण सिमरत पूजा मूल सुख मह जन स्थूल चह वर्ण कृति उपदीस नानक पंडित का सदा दीस बीज मंत सर्व को ज्ञान चह वर्ण मह जप गो नाम जो जो जप है तस्की का तो सा संग पावे जन कोई कर कृपा अंतर वरतार पास प्रीत मुक्त पात्र कवतार सर्व रोग का यव खद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गायम कह जुगत के धना पाई धर्म नानक मेला है जिस लिखिया दुर्कर्म जिसका मन पार ब्रह्म का निवास तुसका नाम सत राम दास आतम राम दुरिया दास दस अंतरण पाई तिन पाय सदा निकट निकट हर जान सो दाह दुर्गह प्रवान अपन दाह को आप कृपा कर दह दाह कहो सब सो जीव पर सकल संगात मोदास युग नानक राम दास प्रभु की आज्ञा आत्म हिता वह जीवन मुक्त सौ कहा वह दैसा हरख तैसा सुख सदानंद तहन वियोग दह स्वरण दैस्यो समाटी तैसा अमृत तह विखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताय साई जुगत नानक पुरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊ जित जित कार राख तैसा तन आप कर्म करावन जो प्रभु पावे सोई फन हो पास रिवाब हुयान तत्रांग लखिना जाहि पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दी तैसा प्रकाश पार ब्रह्म करता अपना सदा सदा सदा दयालु सिम सिम नानक भय निहाय श्लोक स्तुत करिहि अनेक जाने अंत न पार अपार नानक रचना प्रभु रचिव वेद अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होय पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट वन ब्रह्मदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपी स्रोते कई कोट आत्म ध्यान तार कई कोट कव का विचार कई कोट नव तन नाम त्यावे नानक करति कांत नाम पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंत अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभ्यगात्म नकोर कई कोट पर दर्भ का हिर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रम आहि कई कोट पर देह प्रमाहि जित जित लाभ हो तित तित लगना नान करत की जाना करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राज रह भोगी कई कोट पंखी श्रव्य पाई कई कोट पाथर बिरख न बजाय कई कोट पवन पाणी बसंत कई कोट देश भूमंडल कई कोट शशिहर सूर्य नखियातर कई कोट दीवदानव इंद्र श्री क्षत्र सगर समाग्री अपना सूत धार नानक जिह जिह पावत सतहन तार कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत रसासत कई कोट की रतन समद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट की चर जीवे कई कोट गिरिमेर स्वर्ण धीवे कई कोट जाख किनर उपसाज कई कोट भूत प्रे शुक्र मृगाच सब दिन गिरा सब होते दूर नकाबले उतरा आप भारपुर कई कोट पाताल के वास कई कोट नर स्वर्ग निवास कई कोट जन्म है जीव हमर है कई कोट वाह जोनि फिर है कई कोट बैठते ही खा ही कई कोट काल तक पा ही कई कोट की तनवंत कई कोट माया मह चिंत जह जह भाणा दह दह राख नानक साहब किसे उपराव का हाथ कई कोट पय बैराग राम नाम संग तेन लिवलाग कई कोट उपराव कहु जंत आत्म मह पार ब्रह्म लहंति कई कोट दर्शन प्राप्यास जिनको मिले प्रभ मास कई कोट मांग साधंग पार ब्रह्म दिन लागा रंग जिनको हुआ सु प्रसन्न जन सदा धन धन कई कोट खाणी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हो अवतार कई जुगत गिन विस्तार कई बार पसरे उपासार सदा सदा एक एकंकार कई कोट गिने वह पैत प्रभु हुई ब्रह्मा समाया तू तक अंतरा जाना कोई आप आप नान प्रभु सोई कई कोट पार ब्रह्म के दास तन हो वे आत्म प्रगा कई कोट तात के बीते सदा न हार है कुनेत्र कई कोट नाम रह भी वह हमर पै साध साध ही जीव है कई कोट नाम गुण गाय है तुमरा सो सुख सहज समाय है अपने जन को सा संभारी नानक वही परमेश्वर के प्यारे श्लोक कारण कारण प्रभु एक है दूसर नाही कोय नानक देह बलहारण जल थल मही गल सोय अष्टपदी करण करावन करण जोग जो देह पाव सोई होग खेन मह था प्यो था अपन आरंद न किस पार वार हुक्म तार तार रहावे हुक्म उपजा हुक्म समावे हुक्म ऊच नीच ब्याव हार हुक्म अनुक रंग प्रकार कर कर दिखा अपनी उड़िया नम सम रह समाई
जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि अपनाए आवे कहो मैं अनुख दी क्या हुए आवे जो दिख पावे सोई करावे उसका हाथ हुए ता सब की शैली जो दिख पावे सोई करिए अन जान तो बिख्या महरा चाहे जे जान ता अपना आवा चाहे परम बुला दह दह तावे ने मुख चार कुंड फेरावे कर कृपा जस अपनी भगत दी नानक तीज जना मिले खेन मह दीज कीट कौ राज पार ब्रह्म गिरी उनवा जा कर दृष्ट कछु न आवे दिस तत्काल तह देह प्रगटावे जा कहो अपनी करा बख्शिता काली खाना करा जगदीश जीव पिंड शब्द गिरा घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बहण तो बनाई नानक जी वह दीख बढ़ाई उसका बल नाही सहायथ कर्म क्राम सर्वगुनाथ आज्ञा कर बपरा जियो जो देह पावे सोई हुन थियो कबहु ऊच नीच मह बसा कबहु सो घर खरंग हसा कबहु नींद जिंद व्याव हार कबहु आकाश उपाय हार कबहु बेत ब्रह्म विचार नानका मिलावन हार कबहु निरत कर महापाद कबहु सोय रह दिन रात कबहु महाक्रोध विकराल कबहु सर्व की उदरवाल कबहु होय वह बड़ राजा

सुपन मनोरथ अमृत सब काज, नाम रंग सर्व सब होए बड़ भाग्य के सब प्राप्त हुए। कर्ण काम रापिया सदा सदनान खर जाय कर्ण करण करावन करण हार। उसके हाथ कह विचार जैसे दृष्ट करे तैसा हो जा पिया बाप राव सोए जो किस गिनो सपना रंग सब दे दूर सब भूखा संग जा दिखा करे बबी का बही का बहन एक मरण बिन सया बन जाय। नान साधु रहे समाया बबदी सा समझया बापी रजा सबके साथ है गिनो अपने विस्तार सब का शोष कह करने आरुति बिन कह हो कि सोए थान थान दरी कह सोए। अपने चल ताप करने हार का उद कर रंग आप आर मन मह आप मन अपने वह नानक कीमत कहना जाय। साधु साधु साधु प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद कना वखियान साच साच साच सब गिना गोट मधि कना बिरला चीना। परा परा परा तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल त्रिवाणी काट काट सुनि श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जप नानक मन प्रिय श्लोक। संत सरन जो जान पर सुजन उदरन हार संत के निंदा नानक बहर बहर अवतार अष्टपदी संत का दुख नार जकट संत का दुख जम दिन ही छोटा संत का दुख सुख सब जाय। संत का दुख नरक में पाय संत का दुख न बात हो मलिन संत का दुख न शोभ दिहीन संत के अति कर खान कोय संत का दुख थान प्रष्ट हो संत कृपाल कृपा जी कर नानक संत संग नंद कबीर तारा। संत के दुखन ते मुख पावे संतन का दुखन काग जन लवे संतन का दुखन सर्व जोन पाए संत का दुखन त्रिगत जोन किरमवाए संतन का दुखन त्रसना मार जला संत का दुखन सब कुशल संत का दुखन तीज सब जाय। संत का दुखन नीच नीच आय संत दुखी का था को नाह नानक संत पावे ना हुई विगत पाही संत का नंद महाताई संत का नंद खिंड कन्ना पाई संत का नंद को महातियारा संत का नंद को परमेश्वर मारा संत का नंद का राज तिहीन संत का नंद को दुखी हर दीन संत के नंद का सर्व रोग संत के नंद का सदा बिजोग संत के नंदा दुख मह दुख नानक संत पावे ता उसका भी होय मोख। संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी कसा का नहीं वेत संत का दुखी का उडान लाग संत का दुखी का सब त्याग संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन्म मरा संत दुख ना सुख देटारा संत के दुखी का ना ही ठाऊ नानक संत पावत लय मेला आयु संत का दुखी आदि बीज ते टूटा संत का दुखी कथा काज ना पा हु जाय संत के दुखी का उद्यान परमाई है संत का दुखी उजड़ पाई है संत का दुखी अंतर तीर्थ होत है जो सास मन मृत किलो था। संत के दुखी के जाड़ किस ना है अपन बीज आप ही खा ही संत के दुखी का वरण रखना नानक संत पावत लय ओ भार संत का दुखी यो बेल लाए जो जाल भी हूं मछली तड़ फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजा जो पाप की दाना नहीं द्रा पाए संत का दुखी छुटा अकेला जो बुगाड़ तेरे खेत में हिंद हेला संत का दुखी धर्म तेरा है तो संत का दुख साध में थे कह तो कीर्त नंद का दुर्ही पाया नानक जो दुख पावे सोई थे संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत का दुखी का दरगाह मिला सजाए संत का दुखी सदा सहकाया संत का दुखी ना मरे ना जीवाया संत का दुखी की पूजा ना आसा संत का दुखी उठ चला नरासा संत का दुख न दृष्टा कोई जह पावे तैसा कोई हुए पाया कीर्त ना मेटा कोई नानक जाना सचा सोए सब काट दुखी हो करण यार सदा सदा दुख का नमस्कार। प्राव की उस्ताद करो सा प्राव की उस्ताद करो दिन रात तो सहती आव हूँ सास ग्रह सब काश वर्त का किया जैसा करे तैसा कुछ किया अपन की लाभ करने यार दूसर कौन कहे विचार जे हम कृपा करत सपन नाम दी बड़ भागी नानक जन से श्लोक ताजह से अनुसर जन सिमरह हर हर आई का सर मन रखो नानक दुख परम पाव जय अष्टपदी मानुख की टीक वृथि सब जान दीवन कवि का भगवान जिसका दिया रह आ गए बहन तरसन ला गए मार रख कुआ मानुख कह किस ना हाथ का बूझ सुख का नाम रख कंठ परोय सिमर सिमर सिमर प्राव सोय नानक बिघन लागा कोई उस्तत मान महकार निरंकार कर मन मिले सद व्यवहार निर्मल रसना मृत पियो सदा सुहेला कर लीह जियो नैन पी ठाकुर का रंग सा संग बिन सा सब संग चरण चाला मारक गोबिंद मिठ पाव जब हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगा नान पूजन मथा बिट पागी ती जान जग माह सदा सदार के गुण गा हे राम नाम जो करह विचार से गन संसार मान तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जान दिय सुखी कोई एक पछा नये तो गेह सोजी जान नाम संग जिस कमर मान्या नानक दिन ही निरंजन जानिया
गुरु प्रसाद अपना सो जाय दुख जानो दर्शना भू जाय सा संग हर हर जह कह दो सर्व रोग त्यों हर जन रहत अनदन कीर्तन केवल बखियान ग्रह तमा सोई निर्वाण एक ऊपर जय जान की आशा दुख कट गया जम की पासा पार ब्रह्म की जिसमान भूख नानक ते सहना लागे हम दुख जह को हर ब्रह्मान चित आव सो संत सो हेला नहीं उड़लावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किस दे डरा जैसा सत ऐसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सी जिया गुरु प्रसाद तत सब जिया जब दिखा तब सब जिस गुरु नानक सो सुखम सोई अस्थुर नह किस जन्म नह किस मर अपन चलता भी करे आवन जावन दृष्टान दृष्ट आज्ञा कार्य तार सब श्रेष्ठ आप सकल महापानक जुगत राज था प्यो था प्यवनाशी नाह किस कांड तारण तारहु ब्रह्मांड अलख्यो पीव पुरख प्रताप आप जपाय तनांग जाप जिन प्रभु जाता सो सुभावंत सकल संसार उदरा धनवंत प्रभु के सेवक सकल धारण प्रभु के सेवक दुख विसारण आप ही ले लय कृपार गुरु का सब जापय निहार उनकी सेवा सोई लागे जेहनो कृपा करह बड़ पागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख का उत्तम कर्मान जो किस करै सो प्रभु करंग सदा सदा बसा हर संग सहज सुभाय हुआ सोई करण हार पुछाण सोई प्रभु का किया जन बीठ लगा न जैसा सत ऐसा दृष्टा न जह ते उपजे ते हम आहे सुमाई ओ सुख न दान उन हम बने आया उसको आप दीनो मान नानु प्रभु जन को जान श्लोक सर्व कला पार पूर प्रा व्यर्था जानन हार जाके सिमरन उदरी है नानु कह बलहार अष्टपदी टूटी गणन हार गोपाल सर्व जिया पी प्रतपाल सकल की चिंता जिस मन माही तेह ते व्यथा कोई ना ही रे मन मेरे सदा हर जाप अपना सि प्रभा पे आप अपन किया कछु न हुई जी साव प्राणी रोजा कोई दिस बेन ना तेरा किस काम गत नानक जाप एक हर नाम रूप बंधु है ना ही वो है प्रभु की जो सकल काट सो है धनवंता हुई क्या को कर वह जन सब गेह तिस का दिया दर वह तो सूरज जी को कहा वह प्रभु की करा बिना कहता वह जी को हुए वह दातार दिस दिन हर जाना का वार जिस गुरु प्रसाद दूटे हा रोग नानक सो जन सदा रोग ज्यों मंत्र का थम थमन त्यों गुरु का शब्द मन हर थमन ज्यों पाखाण नाव चाट तरह प्राणी गुरु चरण लगत नह तरह जीव अंधकार दीपक प्रकाश गुरु दर्शन दिख मन हो बिगास जो महावदयान महामार्ग पावे त्यों साधु संग बिल जोत प्रगटावे त्यों संत की बाछ तूर नानक है लोचा पूर मन मूर्ख काहि बिल लाई है प्रभु लिखिया लिखिया पाई है दूख सुख प्राप्ति मनहार अवर त्याग तू ते सह जतार जो काश कर सो सुखमार भूला काहि फिर आ जान कौन बस आयु तेरा संग लौट रही रास लो विपदंग राम नाम जप हृदय माह नानक पात सीति कर जाहि जस बखर को लय दुआया राम नाम संतन कर पाया ता जब मान रिहु मन भूल राम नाम हृदय मह दुला दुखी संत है संग चाल अवर त्याग विखिया जंजाल तन तन कह सब कोय मुख उजल हर दरगह सोए इहो वा पार बिरला वा पार नानक तक सद बलहार चरण साधगी धोए धोए पियो रब साध को अपना जियो साधगी दूर कर स्नान साधु पर जाइया कुरबान सा सेवा बट भागी पाया सा संग हर कीर्तन गाइया अनक बेगंत साधु राख हर गुण गाय अमृत राह चाख उड़ गही संत है तराया सर्व सुख नानक दिख पाया अमृत कौ जीवाल नार भूखे कौ देवत आधार सर्व न दान जाके दृष्टि माहि प्रभु लिख का लहना उपाय सब के देह का वह करना जोग तिस बिन दूसर वा न भोग जाप जान सदा सदा दिन रहनी सब दूज निर्मल करणी कर कृपा जिस को नाम दिया नानक सो जन निर्मल थी आ जाके मन गुर की परती तह दिह जाना हर भव चीत भगत भगत सुनि आय तिह लो जाक हृदय कुह सच करण सहता गृह सच हृदय सात मुख कह तु सच दृष्ट सच आकार सच वरत सच अपसार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समत श्लोक रूप नारी नारंग के क्षत्रिय गुण ति प्राप्य न दिसे बुझाय नानक जस हुआ सो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मान महाराख मानुकी दुबरी त्याग तेह ते पर ना किस को सर्व निरंतरी को सोया बिना पिता न गहर गंभीर गहीर सुजान पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा न धन दयाल भुख संसार तिरिक चरण पाव नानक मन अनुराग मनसा पूर्ण शरणा जोग जो कर पाया सोई हो हरण परन जा का नेत्र होर तुका मंत्र ना जान होर अनद्रूप मंगल सात जा कर सर थोक सुनि अह कर ताक राज महाराज जोग मह जोगी ताप मह तपी सर ग्रह तमा भोगी
ਧਿਆਈ ਧਿਆਈ ਭਗਤੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਪੁਰਖ ਅਗਨੈ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਉਮੀਦ ਨਾਹੀ ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰਿ ਅਵਗਾਹੀ ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੀ ਜਾਣੈ ਪੂਤ ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣਾ ਸੂਤ ਸਮਾਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੀ ਜਨ ਦਾਹਨਾ ਧਿਆਵੈ ਹਸੀ ਤਿਹ ਗੁਣ ਮਹਿ ਜਾ ਕੁ ਭਰਮਾਈ ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰਾਵੈ ਜਾਇ ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੀ ਅਵਸਥਾਨ ਜੈ ਸਜਨ ਆਵੈ ਤੈ ਸਨਾਨਕ ਜਾ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਭੀਖ ਕਰੈ ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਵੇਦ ਕਿਨੋ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਭ ਅਮਨਾ ਸੀ ਕੰਕਾਰ ਨਾਨਾ ਚਲਦ ਕਰੀ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ਪੂਰਹਿ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਇ ਨਾਨਾ ਵੇਦ ਕਰ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪਿ ਪਾਈ ਸਭ ਘਟ ਦੁਖੇ ਸਭ ਦੁਖੇ ਠਾਉ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰਨ ਆਉ ਨਾਮ ਕਿਤਾਰੀ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ਨਾਮ ਕਿਤਾਰੀ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਾਮ ਕਿਤਾਰੀ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾ ਨਾਮ ਕਿਤਾ

श्रेष्ठ असो करणे आर अपना पूछ कर विचार कर दी कि मैं इतना जाना कि आ नानक जो दिख पावे सो वर्ती आ बिस्मन बिस्म पै बिस्मा जन बुझिया था स्वाद प्रभ करंग राज जन रही गुर के वचन पदार्थ लही उय दात युद्ध काटन हार जा के संग तरा संसार जन का शिव सुवर भागी जन का संग एक लेव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुरु प्रसाद नानक फल पावे सलोक आदि सच जुगाद सच है पिय सच नानक होसी पिय सच अष्टपदी चरण सातु सत प्रसन्न हर पूजा सातु सत शिव दार दर्शन सातु सत भीखन हर नाम सातु सत यावन हार आप सात सत सवतारी आप गुण आप गुणकारी सब सात सत प्रभ भक्ता सुरत सात सात जा समता भुजन हर को सात सब हो नान सात सात प्रभ सो सात स्वरूप रेदा जन मान्या करण कराम तन गुरु पुछाने जा कर दया विश्वास प्रभाया तत् ज्ञान तिस्मर प्रगटाया पैती निरपा हुई बसाना जहति उपजत हमारे समान वस्त माहिर वस्त गढ़ाई ता कहु पियन न कहना जाय बुझ जाय बुझन हर विवेक नारायण वीर नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञा कर ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत ठाकुर के सेवक निर्मल गीत ठाकुर का सेवक जाना सांग प्रभु का सेवक नाम का रंग सेवक का प्रभु पालन हर सेवक की राखन रंकार सो सेवक जह दया प्रभु तार नानक सो सेवक सा सुमार अपने जन का परदा ठाके अपने सेवक की सर पर राख अपने दाह को दी बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पात राखे ताकि गंधमित कोई ना लाख है प्रभु के सेवक का कुआ ना पा ऊंचा प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे जो प्रभु अपने सेवा लाया नानक सो सेवक दह दह प्रगटाया नीकी कीरी महकल राख है भस्म कर लश्कर को राख है जिसका शासन कर दे अवता को राख दी कर हाथ मानस जतन करत बात तुस्के कर तो व्यर्थ जात मारा न राख अवन कोई सब जिया कर रख सोई काहि सोच कर हरि प्राणी जब नान प्रभ लख वाणी बारंबार बार प्रभ जपिया पिय अमृत हमान तंत्र पिय नाम रतन जिन गुरमुख पाया तुस्की शरण दृढ़ाया नाम तन नाम रूप रंग नाम सुख नाम का संग नाम राह जो जन द्रवतन मान तन नाम है नाम समान उठत बैठ सूत नाम कह नानक जन का सदका बोल जाह जिह बदन रा तू प्रभ अपना जन की निंदा तू करह भगत आत्म कह जाय प्रभ अपने सियों रह समाय जो हुआ हुआ तो सो जान प्रभ अपने का कुंभान तह की महिमा कौन बखान दुष्का गुण कहे एक न जानो आठ पैर प्रभ बसे हजूरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे दिन की ओट ली मन तन अपना दिन जान दे जिन जान अपना प्रभु सत सो जान सर थो का दादा तुसकी शरण सर सुख पावे तुसका दर्श सपा मिटावे और श्याम सगली शार देह जन की मुसीबा लागा जान हुई तेरा नानक देह जन की पूजा हूँ सत पैरा सलोक सात पुरख जन जान सतगुरु तुसका नाम तिसका संग से खुदरा नान खर गुन गावष्ट पदी सतगुर सिख की करा व्रत पाल शिव कव गुर सदा दयाल सिख की गुर दुर्मत मार हेरा गुर वचन हर नाम उचरा सतगुर सिख बंधन काट गुर का सिख बुकार दियाट सतगुर सिख को नाम तान दिए गुर का सिख बुढ़ पागी ही सतगुर सिख का हलत बल सवार नानक सतगुर सिख का जी अनाज संवार गुर का गृह शिव को जो रह गुर गया गा मन महसा है उस कव कर का छना जनाव रह नावृत सत्याव मान बीचा सतगुर का पास तेस सेवक की कार्य रा सेवा कर दो निह कामी तस का होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जसाव करी नारायण सो सेव गुर की मात ली बीस विश्व गुर का मान माना सो सेव परमेश्वर की गात जाना सो सतगुर जिस हृदय हर नावन कुबैर गुर का बल जाओ सर्वनिदान जी का दाता अठ पहर पार ब्रह्म रंग रात ब्रह्म जन जन महापार ब्रह्म कह आव नहीं कह परम सहस सयान बलया न जाइय नानक ऐसा गुर बिड़ भागी पाई सफल दर्शन पीखत पुनीत बरसत चरण गात निर्मल गीत बीट संग राम गुण रवि पार ब्रह्म के दरगाह कवि सुनकर वचन कर्ण आगा निमन संतोख आत्म पति आने पूरा गुर रखिया और जाका मंत्र अमृत दृढ़ पीखा हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाई नानक जह पावत हलय मलाय जिह बाई कुछ तत्न एक साथ पुरख पूर्ण बबी काह न बहुत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदायी ताकि जीवन के नाना पाई अनक भगत बंधन नित कर है चरण कमल हरदास सिमर सत गुर हरि सतगुर अपने नानक जह प्रसाद सब प्रभ जपने हो हर रास पावे जन कोई अमृत पीवा अमृत होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जा के मन प्रगट गुणता साठ पैर हर का नाम ली सच बदी शिव का दी मोह माया का संग ना ली मार मार रख हर हरि एक
ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਪਰਮ।

पराय कुंभुज परम पद पाई एते उपर नहि विचार जा कमन बस अंतरंकार बंधन तोर भय निर्भय आंदन पूज गुर के पार लोक सुखी पर लोक सोहे लेन दान हर प्रभा महवीर सा संग मिल करो आनंद गुण गाव पर परमानंद राम नाम तद करो विचार दुर्लभ दीह का करो उदार अमृत भजन आज के गुण गाय उपरा तन कह है स्वभाव आठ पहर पर भी खव नीरा मिटया ज्ञान विंस अंधेरा सन उपदी हृदय साव मन इच्छे नैन फल पाव फल

दुख नाम जपत मन उबत सुख चिंता जय मिटे अहंकार देह जन को कोई न पहचन हर से रूप ठाडा गुरु सूरा नानक ताज कार्य पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पीख उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर है रूप धन सेवा सुख प्रवान अंतर जम पुरख प्रधान जिस मन बसा सो होत निहाल ताक निकट नावत काल अमर भय अमर पद पाया सत्संग नान कर ध्याया सरो ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा दे संत भेटिया नानक मन प्रकाश अष्टपदी संत संग अंतर प्रभु डीठा नाम प्रभु कला का मीठा सगल समिगरी एक सकट माहन करंग नन दृष्टा ही नौ निध अमृत प्रभु का नाम दिह मैं कब श्राम सुन समाय दान हत तह नादु कह न जाय अचरज विस्मय दिन दिख सब दिखाय नानक दिह जान सो जी पाई सो अंतर सो बहर अनंत कट कट व्यवरह भगवंत तरन माही आकाश पायाल सर्वलोक पूर्ण प्रात पाल बंत इन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आगे तैसा करम पावन पाण वै संतर मही चार कुंट दय दिश समाही दिह दि बिन नह कोठा गुरु प्रसाद नानक सुख पा वेद प्राण समृत मह दीख सस हर सूर नख यात्र मही बाणी प्रभु की सब को बोले अब डोल न कब हूँ डोले सर्व करा कर खिल खील मोल न पाई अगुण है अमूल सर्व ज्योत मह जागी ज्योत तारहु स्वामी ओत पोत गुरु प्रसाद परम का नास नानक तिन मह हो विश्वास संत जना का पीख सब ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म संत जना सुन सब भजन सर्वव्यापी राम संग रचन जिन जाता दुखी हरहत सत भजन साधु सब कहत जो जो हो सोई सुख मान करम करावन हार प्रभ जान अंतर बस बाहर भी हो नारंग दर्शन दिख सब मोहि आप साध किया सब सात देह प्रभ दे सगली उत्पात देह पावत कर विस्तार देह पावत एक अंकार अनक कला लखी न जाय जिस पावत हलय मिलाय कवन निकट कवन कहिया दूर आप आप आप हर पूरे अंतर्गत जिस आप जनाय नानक तो जनाय बुझाय सर्वपूता वरतारा सर्वनयना विखनहर सगर समग्री जाकर तनाया पंजा साहब ही सुनाया पंजान खीर बनाया गया कारी की निमाया सबके मदलिप तो रह जो किस कहना सो आप ही कह आज्ञा व्या गया जाय नानक जा पावे तले समाये स्थिर हुए सुना ही बुरा उरा कहु के न कश करा भला कर तू तात ने किया जान अपनी जी की आप साच तारगी सब साच उत्पोत अपन संग्राच ताकि कदमित कहीं ना जाए दूसर होए ता सोजी पाए दसका किया सब प्रवान गुरु प्रसाद नानक हो जान जो जान सदा सो होए

सब जगत त्राय जाने आवन कह है सुवाय जन का संग चित आवे ना हुआ मुक्त मुक्त कर संसार नानक देह जन को सदा नमस्कार श्लोक पूरा प्रभारा ध्या पूरा जाका नाउ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाव अष्टपदी पूरे गुरु का सन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर भीक्षा ससा सिमरा गोविंद मन अंतर की उतरा चिंद असनियत त्याग हतरंग संत जन की धूर मन मांगा छोड़ बिनती करहु सात संग अग्न सागर तरहु हर धन की परली हो भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार।

रतन सुनत कुमावत होती उदार अवतार लोक हन हतार सफल जीव सफलता का संग जा कमल का हर रंग जय जय सवदाना हदवा जय सोन सुन अनंत करी प्रभु का जय प्रगट गोपाल महंत कमथी नारायण कुदरे तन का साथी शरण जोग सों शरण आई कर कृपा प्रभा मिलाई मेट गए बैर भय सबरी अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण हो सेव की सेवाल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सो रसना कहती कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निप हमारी प्रभ की वस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखुनि सहज गोविंद गुण राम जिस मन बसा सोत निधान सर्व इच्छा तागी पूर्ण हुए प्रदान पुरख प्रकट सवल हुए सत ऊच पाय स्थान वह न हो जान हर धन खाट जल जन सोए नानक जिस प्राप्त हुए खेम शांत युद्ध नवनिध बोध ज्ञान सर्वदह सिद्ध विद्या ताप जोग प्राप्त ज्ञान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कौन प्रकाश सबके मत सकल देवदास सुंदर चतर तत कविता समुदर सी एक दृष्टिता यह फाल तेह जान कै मुख पने गुरु नानक नाम भजन मन सुने इहो निदान जप मन कुए सब जुग महता की गात हुए गुण गोविंद नाम तुन बाणी समृत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत का मन विश्राम कूट अपराध साधु संग मेटा संत कृपा दि जमती छोटा जाके मस्तक कर्म प्रभा।

नानक साचा सर्ब दातार जे को डूबे फिर होवे सार नानक साचा सर्ब दातार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला।

दातु जन निशान गावे को गुणवड़ियाँ चार गावे को विद्या विखम विचार गावे को साज करे तन खेह गावे को जीय लै फिर देह गावे को जापै दिशा दूर गावे को वेख हदरह दूर कथ न कथि ना आवै तोट कथ कथ कथि कोटि कोट कोट कोट, कोट, कोट, कोट, कोट, कोट, कोट, कोट

कथने जाहे। ना उहे मरहे ना ठाके जाहे, जिनका राम वसह मन माहे। तिथे भगत वसह के लुआ, करहे आनंद सच्चा मन सुए।

और न पीस जा कर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैल्यो अनुरागम नाम काम विहीन पेखताम हूं नहीं जाए सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तथा एक मूर्त अनेक दर्शन की रूप अनेक खेल खेला खेल खेलन अंत को फिर एक दे भेव न जान ही जय वेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जान ही कहे जेवता न जात जागर जन्म मरण विहीन चक्र बकर फिरा चतर चक मन ही प्रतीन लोक चौद हैं के बिखा जग जापई जह जाप आद देव अनाद मूर्त थापे सब जह थाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व सुरचि स्वयं पव गण भंजन हार काल हिम कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत भूत अलख अपेश अंग राग न रंग जा कह जात पाद न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप मेघ अन उस्तक एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप सूत अंग हीना भंग अनादम एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेक सर्वशास्त्र न जानहि जे रूप रंग अरदेख परम वेद पुराण जाकह नेत भाखत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवहि वह चेत मद पार छंद प्रसाद गुण।

में पूजांग प्रयादिशांदम चतुर्चक्र कर्ता चतुर्चक्र हर्ता चतुर्चक्र दाने चतुर्चक्र जाने चतुर्चक्र वर्ती चतुर्चक्र परती चतुर्चक्र पाले चतुर्चक्र काले चतुर्चक्र पासे चतुर्चक्र वासे चतुर्चक्र महने चतुर्चक्र दाने जाजरी शांद न सुत्रय न मित्रय न परमंग न पित्रह न कर्मंग न काय जन्म अजाय न चित्रय न मित्रय प्रेह पवित्र पृथिश दिशा दृश अकृश भगवती शांदो त्व प्रसाद कथते के अशी देश के अभिज पिश के अगन कर्म के अपंज परम के अभिज लोक के अदित शोक के अवतूत वर्ण के विभूत कर्ण के राजम प्रवह के धर्म तुझ के अशोक वर्ण के सर्व अपर्ण के जगदंकृति हैं के शत्रन क्षत्रि हैं के ब्रह्म स्वरूप है के अनुपो अनुप के आद अदिव हैं के अब अपिव हैं के चित्रंग विहीन है के कह अधीन है के रोजी रजा कर ही मेरे हा कह के पाक बे अब हैं के गैबुल गैब हैं के अफुल गुनाह हैं के शाहान शाह है के कारण कुनिंद हैं के रऊ के रोजी देहंत हैं के राज रहीम हैं के कर्म करीम हैं के सर्वं करी हैं के सर्वं दरी हैं के सर्वत्र मान्य हैं के सर्वत्र दान्य हैं के सर्वत्र गौण हैं के सर्वत्र पौन हैं के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र साजा है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जा हो के सर्वत्र पा हो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पिश है के सर्वत्र मान है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं करीम है के परम फहीम है के अकल अलम है के सर्व कलाम है के हुसन वजू है तुम्हारा वजू है मेसु सलाम है सलिक तुम दाम है गरीब सिकस्ता है गरीब परस्ता है बिरंदर मकान है जमीन जमान है तुम्हें युल तुम्हा मैं रुजो निदान है ने हरीफुल अजीम मर जाएगी यकीन है अनेकुल तरंग है भेद है अपंग है अजुज निवाज है गरीबन खराज है निरुक्त स्वरूप है तर मुगत विभूत है प्रभूत प्रभा है सुजुगत सुदा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओम आद रूप है अनाथ स्वरूप है अनंगी अनाम है त्रिभंगी त्रिकाम त्रिभर्घन त्रिबाध्य गंज अगाध है शुभंग सर्वा के सुसर्वानुराग है त्रिभुग स्वरूप है छिज है अशूत है के नरकुं प्रणास है पृथ्वी प्रवास है नक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरुक्त सदा है।

सब दास हैं, तंद है, बंद है, अभक्त है, विरक्त है, न सब प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, लिख है, देख है, अलेख है, पीख है, टाह है, गह है, संभ है, गंभ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट छांदो त्व प्रसाद, सर्वंगता सर्वंगता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंपुराण सर्वमुत्राण सर्वं कर्म सर्वं धर्म सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्व प्रसाद नमो नरकनाश सदैव प्रकाश अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमाद प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे इंद्रभंगी त्रिकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे।

कारण है, सर्व उबारण है, त्रित के तरण है, जाग के करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्व पास्य है, सर्व नास्य है, करुणाकर है, संपर है, सर्वेश्वर है, जगत ईश्वर है, ब्रह्मंड है, खलखंड है, परते पर है, करुणा कर है, जपा जाप है, थपा थप है, कृता कृत अमृत अमृत है, अमृता मृत है, करुणा कृत है, कृता कृत है, तरणी तृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, कृता कृत है, अमृता मृत है, अजवा कृत अमृत अमृत है, नरनायक है, खलकायक है, विषमपुर है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्पायक है, भाव भंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जाप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म बास है, जास के जास है, पूजांग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो ते तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो वीर बीजे, नमो रासंग ताम संग सांद रूपे, नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे, नमो

इंद्र अनादंग भूते कलंकार रूपे अलंकार अलंकेनम आसनम वांग बंके अपंगी स्वरूपे अनंगिया नामे द्रपंगी द्रकारे अनंगिया कामे एक अक्षरी छंद अजय अलय भय भय भू अजू अनास अकाश सुगंज अपंज लख।

अलेखें भुजंग प्रयात छंदम नमस्तु प्रणाम समस्त प्रणाश्य कंजुल नाम समस्त निवास नरकाम भूते समस्त स्वरूप कर्म प्रणाशी सुधर्म भूते सदा सत्यदानंद सदृंग प्रणाशी करीम को निंदा समस्त निवासी अजैव विभूते गजय विघ्नि में हरियं करियं करी मुरहि में जत्र चक्रवर्ती जत्र चक्र भुगते स्वयं पव।

तंखन मान मलाएंगे श्री पाद श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बरियार विचार है सग धर छैया तोरत दे सुमंद वासन माते गजान गमान मलैया गाड़े गड़ाण के तोड़न हार सुभागन ही जग चार लवैया साहिब श्री सब कुशर नायक जाजग अनेक सुवेक दवैया दानव दे फरिंदर सच रूप भूत भविख भवंज पैंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाव थ पैंगे पुन प्रतापन बाट जैत धुन पापन के बो पुंजख पैंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सुबह अवलोक चपेंगे मानविंदर गजिंद्र राधव जौन त्रिलोको राज करेंगे कूड़ स्नान गजातक दान अनेक सोमवर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सच्ची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पद के प्रस हैं पग ते नर फेर न देह तरेंगे कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठो भग ध्यान लगायो न हथ फिर लिये सात समुद्र लोग पर लोग गवायो बस कियो बिखे हंसो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सुबैस बितायो साज कहो सुन लिहो सुबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहुल पान पूज धरियो सिर काहुल लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मैं काहू पशाह को शीस निवायो को भूतान को पूजत है पासो को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवें कवियो बार बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दर इच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब तुम काव हुआ भात दय मुहि बचाव हो सुखी वसै मोर परिवार सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा ने कर दय करी है सब बैरन को आज संगरी है पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम है शाड़ कोई अवर ना त्याहूं जो बर चाहूं सो तुम दे पाऊं सेव सिख हमारे तारिय है जुन जुन सत्र हमारे मारिय है आप हाथ दे मुझे बरिय मरण काल का त्रास निवरिय हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करी हो रक्षा राख लेहु मह रखन हारे साहेब संसहाय प्यारे दीन बांध दुष्टन के हंता तुम पुरी चतुर्दश कंता काल पाय ब्रह्मा बवतरा काल पाय शिव जु बवतरा काल पाय कर विष्णु प्रकाश सा सगल काल का किया तमाशा जवन का जोगी।

मुनजन अमृत खोज देसु अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जन सब तुद पाए विवेक प्रसन्न आया लाभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

ज्यों पक्का रोगी बिल लाए। धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज तुरे जा रहे ने, भाई मरदाना जी नाल हन। जांदिया जांदिया एक घर दे विचों उची उची आवाजा सुनाई दित्तियां। पातशाह आखण लगे, मरदानिया ये उची आवाजा कित्थों आ रही ने? आखण लगे पातशाह, ये घर है, घर दे जी आपस विच लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इस करके एक दूसरे नूं उची उची बोल रहे हैं। ते ओ सामने एक बजुर्ग पिया है। ते बादशाह आखन लगे, ओ बजुर्ग ओ भी कुरला रहा है। आखन लगे, महाराज इंज महसूस हो रहा जिमें उस बुजुर्ग नूं कोई रोग लग्या होया है, रोग दे करके कुरला रहा है। पातशाह जी ने फिर उत्थे शब्द उच्चारण किया, जीव तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार। पातशाह कहिंदे ने, जिहड़े हिरदे नाम नहीं जपणगे ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਪੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤਪੇਗਾ। ਤਪ ਤਪ ਖਪੇ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣਗੇ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਸ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ।

देख दिखा पर क्या गया क्या ले इंटरेस्ट आप कर तृतीय ब्रह्मांड चलो पानी चाहिए अष्ट दशा तीन समारोह पंचम पंचम आप एक रंग पंखी छूटे प्रभा सच्चे सच्चे सच्चे सपत्तम सप्तमी

ठीक है, तो पता है लागे लिखेंगे अपना करेंगे। मैं ऐसे मेरा बिल्कुल डाउन मैंने बिल्कुल देख ही रहा पता है उसकी दावत है पर मैं क्या रहा तो देखिए बैठ कर देखिए बिल्कुल बैठ कुछ ही लगे। हाँ अच्छा अच्छा तो पूजा कर दिया ओके अच्छा हाँ नहीं

0: पिंगल पर्वत पर पवन नहीं होत उहा उस गवन।
1: करतार करुणा मैं दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा करे।
0: संग सहाय सो आवे।

0: ताको कीजे सद नमस्कार
1: जिसने
0: अपना हुक्म मनाया सर्ब थोक नानक ते पाया अपनी अमान कछु बार साहो ले अज्ञानी मन रोस करे
1: अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहुत उसका विश्वास न होवे
0: इसकी बस तिस आगे राखे प्रभ की आज्ञा माने माथे
1: उसते चौगुण करे निहाल नानक सारे सदा दयाल
0: एक पात माया के हेत सर पर होवत जान नेत
1: की छाया सो रंग लावे ओ बिन सहु मन पछतावे
0: ओ दिसे सो चालन हार लपट रहो ते अंध अंधार
1: बटाऊ से जो लावे नेत हाथ न आवे के
0: मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई
1: मिथ्या तन तन कम सुहाया मिथ्या हो मैं ममता माया
0: मिथ्या राज यौवन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल
1: मिथ्या रथ अस्ति अस वस्त्र मिथ्या रंग संग माया मेघसा
0: मिथ्या त्रो मोह अभिमान मिथ्या आप सुपर करत गुमान
1: अस्त्र भक्त साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण
0: मिथ्या सरवण पर निंदा सुने मिथ्या हाथ पर दर्ब कोहरे
1: मिथ्या नेत्र पेट पर मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद
0: मिथ्या चरण पर विकार को तावे मिथ्या मन पर लोभ लवावे
1: मिथ्या तन मन पर उपकारा मिथ्या वास नेत्र विकारा
0: इन बूझे मिथ्या सब पए सफल दे नानक हर हर नाम ले
1: व्यक्ति सागत की आर जा साच बिना कह हो सूचा
0: व्यक्ति बिरता नाम बिना तने अंध मुख आवत ताके दुर्गंध
1: बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाए मेघ बिना जो खेती जाए
0: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यो कृपन के निरार्थ दाम
1: तन धन ते जन जय घट बस्यो हर नाओ नानक ताके बल बल जाओ
0: ते अवर कज का अवर कमावत मानी प्रीत मुखों गंड लावत
1: जानन हार प्रभु पर बीन बाहर वेग न काहू पीन
0: अवर उपदेसे आप न करे आवत जावत जन में मरे
1: जिसके अंतर बसा निरंकार जिसकी सीत करे संसार
0: जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण प्राता
1: करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे माने
0: आपे आप आप करत नबेरा किसी दू जनावत किसी बुझावत नेरा
1: पाप सियानप सगल दे रहत सब किस जाने आत्म की रहत
0: पावे तिस लय लड़ लाए थान थनंतर रहा।

0: जय प्रसाद असब हस्त सवारी मन तिस प्रभ कहो कबहू ना बिसारी
1: जय प्रसाद बाग मिलख तना प्रोए प्रभ अपनी मना
0: जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसे ते आई
1: तिसे ते आई जो एक लख इहा उहा नानक तेरी रखै
0: जय प्रसाद।

0: बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान
1: जय प्रसाद तू चार बिहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी
0: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमर सदा अनूप
1: जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात
0: जय प्रसाद तेरी पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कहे
1: जय प्रसाद सुने कर्ण नाद जय प्रसाद पीखे सुमाद
0: जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना
1: जय प्रसाद हस्त कर चलहै जय प्रसाद संपूर्ण फल है
0: जय प्रसाद परम गत पावै जय प्रसाद सुख सहज समावै
1: ऐसा प्रत्याग अमर कत लागो गुरु प्रसाद।

0: साध के संग मुखी उजल होत साध संग मल सगली खोत
1: साध के संग मिटै अभिमान साध के संग पटै सब ज्ञान
0: साध के संग बुझे प्रभ नीरा साध संग सब होत नवेरा
1: साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन
0: साध की महिमा बाने कौन परानी नानक साध की शोभा प्रभ माए सुमानी
1: साध के संग गोचर मिला साध के संग सदा प्रभु बुलाए
0: साध के संग आवे वस पंचा साध संग अमृत रस पंचा
1: साध संग होए सब की रेन साध के संग मनोहर बैन
0: साध के संग ना कतु तावे साध संग अस्तित्व मन

0: के संग नाही को मंदा, सा संग जाने पर में नंदा।
1: सार के संग नाही हो ताप, सार के संग तजै सब आप।
0: आपे जाने साथ बढ़ाई, नानक साथ प्रभु बने आई।
1: सार के संग न कभू तावे, सार के संग सदा सुख पावे।
0: साथ संग बस्त अगोचर लहे, साधु के संग अजर सहे।
1: सार के संग बसे खान ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे।
0: साध के संग दड़े सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म।
1: साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु के कुर्बान।
0: साध के संग सब कुल आधार है, साध संग साजन बीत कुटुंब निस्तारे।
1: साधु के संग सो धन पावे, जिस धन के सब को बरसावे।
0: साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा।
1: साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन।
0: साध के संग सर्व थान गाम, नानक साध के संग सफल जन्म।
1: साध के संग नहीं कष्ट काल, दर्शन भेट तो होत निहाल।
0: साध के संग कलुखत हरे, साध के संग नरक पर हरे।
1: साध के संग इहा उहा सुहिला, साध संग विषत हर मिला।
0: जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग न बिरथा जावे।
1: पार ब्रह्म साध रित बसे, नानक उदरे साध सुंदर से।
0: साध के संग सुनो हर नाओ, साध के संग हर के गुण गाओ।
1: साध के संग मन के बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे।
0: साध के संग लगे प्राण मीठा, साधु के संग कट कर डीठा।
1: साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पई हमारी।
0: साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग।
1: साध की महिमा वेद न जान है, जेता सुन है जेता बतियान है।
0: साध की उपमा तै गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर।